0: अल्लाह यार योगी।
1: खाहश है तुम्हें तेज चलाते हुए देखें,
0: ये दिहाड़ा थोड़े दिन हो लंघे वडे साहब जाने।

अच्छा जी दी पालकी आ रही है, पिछे संगतां सतनाम वाहिगुरू कर दियां आ रही हन, अगे अगे गुरु के सिख प्यार वाले, कोई झाड़ू दे के थां साफ कर रहे है, कोई छिड़का कर रहे है, ते कोई सुंदर कपड़े विछा रहे है कि मेरा साहब जिथों आ रहा है वो भोए ते ना आवे। प्यार वालियां रूहां सेवा कर रही हन, एक कोड़ा आके जिदे शरीर का रोम रोम कोड़ विच ग्रसिया होया, दुख विच ग्रसिया होया, आके टह पिया, महाराज मेरे ते कृपा करो, मेरे ते मेर करो, मैं बड़ा दुखी हां, जां तां संसार तों इस दुनिया तों छुटकारा पवा दियो ते जां इस शरीर नूं आरोग कर दियो, पता नहीं किहड़े पापां दा फल मैं भोग रहा, ते जे तेरे चरणा विच आके भी पाप ना नसे, पाप ना दूर होए तां किथे होणगे। धन गुरु हरकिशन साहब सच्चे पातशाह जी ने जदों इस कोड़े वल नदर कीती, उस नदर तों अमृत दा मीह वसिया, वेखदियां वेखदियां ए कोड़े दा तन भी अरोग हो गया ते मन भी अरोग हो गया। कोई तन दा कोड़ तां कट लवेगा, ते जे मन विच कोड़ भरिया होया तां ओ किस कम है भाई जिदा मन कोड़ा होवे। गुरु नानक दे दर ते आके तन दा कोड़ भी कटिया जांदा है, मन दा कोड़ भी कटिया जांदा है, इसलिए प्यार विच भिज के झूम के ओ पड़न

हलत पलत दोइले हो सवार, राम नाम अंतर उर्धार, पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसे तिस साच परिख्या, मन तन नाम जपो लिवलाय।

संत बाबा अतर सिंह महापुरुष मस्तु आने वाले कोल गुरसिख बैठे ने एक कल्याण सिंह भी बैठे महापुरखा ने आख्या अज भई चित कर दे धर्म दे किरत दी रोटी खाई किरत दी रोटी कहन लगे महाराज जो हुक्म अज ही प्रबंध कर लेने हैं मजदूरां वाले कपड़े पा ले एक ठेकेदार दे कोल चले गए जेड़ा बिल्डिंग बना रहा सी भाई कल्याण सिंह जी पंच सत गुरसिखां नूं नाल लेके जदों उहदे कोल पहुंचे हन कहन लगा जी असी मजदूरी करना चाहते हैं करो अठ घंटे काम करना पड़ेगा ठीक है करांगे मजदूरी तय हो गई जितना काम अठां घंटियां विच करना सी चौ घंटियां विच कर दिता एक बारी प्यार नाल बोलिए ठेकेदार ने बुला के आख्या ऐ फड़ो पैसे ते जाओ कहन लगे नहीं वायदा अठ घंटे दा है फिर दुगनी मजूरी देन लगा कहन लगे नहीं जो बचन होया है ओ ही लवां कहन लगा पहले मजदूर वेखे ने अजीब आदमी हैं ऐसे बंदे ता मिले नहीं खैर जदों उन्हां पैसियां दा समान लियांदा आटा घ्यो दाल ते फिर हथी बना के बाबा अतर सिंह जी नूं छकाया छक के बाबा जी इतने प्रसन्नता विच आए कहन लगे अज ते लंगर छकण दा आनंद आ गया कल आपां भी चलांगे भाई बाबा अतर सिंह जी ने भी मजदूरां वाले भेस कर ले अज उसे ठेकेदार कोल पहुंचे अज भी भाई काम मिलेगा ठेकेदार उन्हां वल बार बार तक रहा है कि ए मजदूर नहीं हन ए कोई फरिश्ते नहीं ए कोई होर लोक दे बंदे आए हैं ते जदों वेखदिया बाबा अतर सिंह जी ते निगाह पई ते चरना ते डिग पिया कहन लगा तू मजदूर नहीं है ऐसा नाम रतन निर्मोलक उन पदार्थ पाया अनक जतन कर हृदय राख्या रतन न छपे छपाया गुरु की साथ संगत कहन लगा तुसी मजदूर नहीं ते कल दा ही मेरे दिमाग ते बड़ा बोझ पिया होया है ते अज तुसी आए हो मैनू माफी दे दियो मैं ए गुनाह नहीं कर सकदा कि तुसी मेरे सामने टोकरी चुको कुछ सिख लंघ रहे सन उन्होंने वेख्या होए बाबा अतर सिंह जी इत्थे खड़े ने ते झट चरना ते मथा टेकिया गुरु की साध संगत कहन लगे बाबा जी आप दी किरत तां एहो ही है कि आप कीर्तन सुनाओ सानू चंगे राह लाओ ते आप इस भेस विच खड़े हो ते फिर कहंदे ने बाबा अतर सिंह जी ने सिंघां वल वेख्या क
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 18 ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਥੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ 18 ਹੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਭਾਗ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਵੇਖੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਅਨਰਥ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ।

द्वारे विच सोने में लपेटी हाथ चौबन ही फड़ी रही, पेशी दर पेशी अते मिसल हजार रही, खेल गयो खेली खेत खो

चार पदार्थ जे को मांगे, सात जना की सेवा लागे। चार पदार्थ जे को मांगे, सात जना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे और हर नाम हृदय सद गावे। जे को जन्म मरण ते डरे, सात जना की सरनी परे। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक तांके बल बल जासा। बाबा जी बाणी च आखदे हन नाव रूप भयो साध संग। नाव रूप भयो साध संग, कहिंदे जिहड़ा साध संगत है ना, ये समझो एक किश्ती दी तरह है कि तुसी एक किश्ती च सवार हो गए हो। नाव मैंने किश्ती, जो साध संगत बैठ गया समझ लो वह किश्ती दे विच बैठ गया है। जो किश्ती उसनू इस जन्म मरण दे पव सागर दे विचों पार कर दे। नाव रूप पयो साध संग, तो इस शब्द दे विच गुरु बाबा जी ने दस्या है कि साधु सानू की रास्ता दसते हैं, की मार्ग दसते हैं। बहुत ही सिंपल जवाब देता है, बहुत गौर नाल ध्यान नाल सुनो, मन नूं जोड़ के।

साधु, पूर्ण साधु कदे भी ऐसा नहीं करेगा। वो कहेगा गुरु दा मंत्र जपो, गुरु दे नाल जोड़ेगा, प्रिपेयर करेगा, समझाएगा, कड़ेगा, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता जिज्ञासु ओह गुरु दे मंत्र दे नाल जोड़ सके, गुरु दे नाल जोड़ सके। इस दे विच नुक्ता समझण वाला है। साधु ने यह नहीं आख्या कि मेरा मंत्र जपो, कहिंदे गुरु दा मंत्र जपो। साध साधु हर मार्ग साधु दसिया कि जपिए गुरमंत्र। हुण इत्थे एक विचार है थोड़ी जी जो समझण वाली है। गुरु मंत्र ओही जपेगा जिसनू गुरु मंत्र मिलिया है, जिसनू गुरु मंत्र मिलिया नहीं है वो गुरु मंत्र जपण दा अधिकारी नहीं हुंदा, उसनू अधिकार नहीं हुंदा। उस दे गुरमंत्र जपे दी कमाई दा जिम्मेवार गुरु नहीं हुंदा जिसने गुरु तो गुरमंत्र नहीं लिया। अते महाराज जी आखदे हन जो इंसान जीवन दे विच गुरमंत्र प्राणी, जो भी प्राणी गुरमंत्र तो हीणा है, गुरमंत्र तो सखणा है, कहिंदे गुरमंत्र हीण जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रश्न है, कहिंदे हन ओदा जन्म त्रिकार है, लहनत है उस दे जन्म दे जिसने हाले गुरमंत्र नहीं लिया, ते प्रश्न है ओदा जन्म पृष्ठ है, विकार है। गुरमंत्र हीण जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रश्न है, अगे कहिंदे हन कुकर है, सूकर है, गर्दभ है, सर्पन है, काका तुल खल है। कहिंदे ओ इंसान एना जूना दे विच पवेगा, कुकर है, सूकर है, गर्दभ है, सर्पन है, काका है, कुकर है मैंने कुत्ते, सूकर है मैंने सूर, गर्दभ है मैंने गधे, सर्प ने सप, कां। कहिंदे ओ इना जूना दे विच इंसान जाएगा जिस इंसान ने गुरु दा मंत्र नहीं लिया, गुरमंत्र तो खाली है, गुरमंत्र तो सखना। तो साढ़े वास्ते थे दो चीजा क्लीयर हो रही हैं। नंबर एक, साधु एक ही रस्ता दसदा है कि गुरु दा मंत्र जपो, गुरु दा मंत्र जपो। जेको बचन कमावे संतन का सो गुरु प्रसादी तरीए। साधुआं दा बचन यह है कि गुरु दे मंत्र दा जाप करो जितना वध तो वध हो सकता है, तो जिहड़ा इस बचन नूं मन लै वह तर जाएगा, दुखां चों मुक्त हो जाएगा, गमां चों मुक्त हो जाएगा, तमाम किस्म दियां मुश्किलातां उसके कोलों नस जाणगियां, जन्म मरण दा डर उसका खत्म हो जाएगा। साधु एक ही वचन करते हैं, हर मार्ग साधु दस्या जपिए गुरमंत्र, गुरमंत्र दा जाप करो। पर गुरमंत्र दे जाप करन दे वास्ते गुरमंत्र भी तो होना चाहिदा है ना, ते गुरमंत्र किस तो मिलता है? कोई अपने आप ही गुरमंत्र जाप करना शुरू कर लवे ओदा कोई वाली वारस नहीं है, गुरमंत्र गुरु तो मिलता है। जिहड़ी साडी विचार है पिछले हफ्तियां तो आपा पहचानन दी चल रही है, जदों किसे इंसान दे सामने मौत, जन्म मरण दा भय, जिंदगी दे दुख, जो पिछले किते हुए कर्मां दे नाल असी हुण दुख भोगदे हां, इस तो सोझी आ जांदी है, ते संगत च बैठ के उसनूं ए पता चलदा है कि उसने अपने आप नूं लभना है, अपने आप नूं पछानना है। अजिहियां विचारां सुन के फिर वह सोचता है कि मैं किस तरह अपने आप नूं पहचाना। अपने आप नूं पहचानन दे वास्ते, अपने आप नूं लभण दे वास्ते उसनूं उसदी इमदाद चाहीदी है जिसनूं पता होवे कि तू कौन है। परमात्मा ने सानूं बनाया, परमात्मा नूं ही पता है कि असीं कौन हां, अते परमात्मा

में सिरनीमा कर दे। दे तू अकल वाला है, लोकां दे औगुण ना चतारिया है, आपा दुनिया विच सकिया है। कई बार जीव दूसरे दी निंदिया करके आप चंगा बनता है, फलाने विच आ औगुण है, वो आ माड़ा काम करता है, दूसरे दी निंदिया करके आप अकल वाला बनता है। फरीद जी कहिंदे, नहीं बे तू अकल वाला नहीं, जे तू अकल वाला है अपनड़े गरीबान में सिरनीमा कर दे, अपने गरीबान विच चात मार, अपने हिरदे विच देख तू किड़ा गुनाह दा भरिया होया। जदों तू अपने गुनाह वल चाक मारेगा फिर लोकां दी निंदिया नहीं करेगा, जदों अपने औगणा वल देखेगा फिर लोकां नू माड़ा नहीं आखेगा, सच ही तू अकल वाला बन जाएगा। बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, कोई तेरा बुरा करदा है किन्ना भी माड़ा बोलदा है तू उसका भला कर, वो तेरा किन्ना भी माड़ा करे। पर इस जीव ने आखिया, फरीद जी मैं ते बुरे का भला करांगा ते मेरा की फायदा होवेगा। ते सत्संगियो अगली पंक्ति विच फरीद जी कहिंदे, देही रोग न लगे पल्ले सब किश पाए, जेड़े देव बुरियां दा भला करदे ने उन्हां ते रब खुश हो जांदा है, ते जेदे ते रब खुश हो जावे ते सारियां खुशियां

कर्मी सहज ना उपजे सहज से सरन जाए कर्मी सहज ना उपजे बिन सहज से सरन जाए न जाए सहसा किते संजम रहे कर्म कमाए सहसे जियो मलीन है कित संजम तोता जाए कित संजम तोता जाए मन तो